0: हेलो
1: मारी रे
0: नेगे के काज को सगे के तो कई गन गन तिरामनी
1: पर आयो आयो सब करो गुनाओ
0: सगीरा सारा को हो एन लेक नहीं जाके से क्या बुगा अपना नी चीज गिर को हो एन ले कैसे कागा सी से को था फन तुम तरह संगवा पे मेक्सिको बा तुम तरह संगवा तम खैना नाय दिया का गुगा
1: ए नहर गुहानी दानी दी
0: माजी दुरामी
1: हारो गुहानी दाने दीप करामी
0: ने सादा दिया खुन के ते में से दाले मुन ना रहो खबे ना चबा हु
1: ती ते करामी इतनो नासा ना
0: तीनो नासा ना सो ती करामी स्के ने कई बा गुआरो बा उआरे छि आदा तो तुम ना उआरे आरो गा दिरामी के उतारी सा सावे तो जा हु
1: ए ओके कहीं को बाबा
0: तांगी कहीं ओसा दुआ